0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायनियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम जल और जलवायु। आज के कार्यक्रम में हम दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहें।

0: आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। विश्व के लाखों लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित है और अनेक देश जल संकट से पीड़ित है। कुछ क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं अधिक देखने को मिल रही है। ये सभी समस्याएं विश्व समुदाय को जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन इसे वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेते हैं तथा जल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सम्मेलन देशों को अपने अनुभव साझा करने और जल के प्रभावी उपयोग के नए तरीकों को खोजने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों के पास जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों का अच्छा अनुभव है जबकि अन्य देश उन अनुभवों से लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के माध्यम से नए संयुक्त परियोजनाएं तैयार की जाती है और उनके कार्यान्वयन के लिए निवेश आकर्षित किया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे देश में आने वाले दिनों में दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन आयोजित होना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के पिघलने की वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्मेलन के महत्व के बारे में जुरा खान बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین
0: رشک مهمهیم نیتا دوارا جال کوتنیتی کو آگه برهانی سے پرباوی انتراشری سامبندون میں ایک نئی پہل کا ادائی ہوا ہے۔ اس لیے جال سانسدنوں کا ویویکا پورن اپیوگ اور گلیشیاروں کے پگھلنے کا مدعا آج کی تاجکستان سرکار

0: इसा मेलंका एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। आज जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है। तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि तथा मौसम में परिवर्तन जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तजिकिस्तान जो विशाल हिमनदों वाला देश है, इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देता है। तजिकिस्तान के हिमनद मध्य एशिया के कई देशों के लिए जल का मुख्य स्रोत है, लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ये हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। यदि ये प्रक्रिया जारी रही तो भविष्य में पूरा क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है। इसी कारण सम्मेलन में हिमनदों की सुरक्षा, उनका अध्ययन तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उनकी निगरानी जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाती है। दुशांबे जल प्रक्रिया सम्मेलन सतत विकास को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले पीढ़ियों भी उनके लाभ उठा सके। जल प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है और इसका सही उपयोग देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृषि, उद्योग, ऊर्जा और अन्य अनेक क्षेत्र जल पर निर्भर है। यदि जल की कमी हो जाए या वो प्रदूषित हो जाए तो आर्थिक विकास धीमा पर जाता है और लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सम्मेलन में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन से तजिकिस्तान और विश्व को क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय पर जोराखोम बोबजोदा ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया।
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبوس های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت
0: میگیرد. انترشی استر که سمیلان کا آیوجان اور سنچالن وستاو می رشک که سامانی نیتا که انترشی پایلون که آدھار پر کیا جا راہی. یکی ناوشی که آج انترشی منچ پر تشکیستان گنجا کو کیوال جلوائیو پریورتان سے سامانید انترشی پایلون کو پرستود کرنے والے اگرانی دیش کے روپ میں ہی نہیں بلکہ اسے دیش के रूप में भी जाना पहचाना और स्वीकार किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्याओं को समय रहते उठाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से विश्व समुदाय को जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, आज तजिकिस्तान गणराज्य वास्तव में राष्ट्र के सम्मानित नेता के 16 अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के कारण विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इन सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को स्वीकार और समर्थन दिया है। राष्ट्र के सम्मानित नेता की प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय पहल सतत विकास सुनिश्चित करने, जनता के जीवन स्तर और गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा गरीबी के स्तर को कम करने के उद्देश्य से स्वीकार की गई है। इसी संदर्भ में हमें विश्वास है कि 25-26 मई 2026 को आयोजित होने वाले चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन लक्ष्यों और योजनाओं की प्राप्ति में सफल होगा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम एमोमाली रहमान ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया है।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज़।

नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम जल और जलवायु। आज के कार्यक्रम में हम दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहें।

0: जलवायु और जल से संबंधित समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में आयोजित चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक माना जाता है। ये सम्मेलन तजकिस्तान गणराज्य के पहल और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों की सुरक्षा तथा सतत विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करना है। आज के आधुनिक युग में जल का प्राशन मानवता की सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं में से एक बन चुका है, क्योंकि मानव जीवन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सीधे जल संसाधनों पर निर्भर है। इसी कारण इसे सम्मेलनों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018 से आज तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से दुशांबे शहर में 3 उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जो सन 2018, 2022, 2024 में। इन सम्मेलनों की श्रृंखला, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जल संसाधनों, स्वच्छता तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक स्थायी मंच बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि 25 से 28 मई सन 2026 तक दुशांबे शहर में सतत विकास के लिए जल 2018-2028 अंतर्राष्ट्रीय कार्य दशक पर चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जल और जलवायु के क्षेत्र में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति राष्ट्रीय नेता मामहिम इमोमाली रहमान के अंतर्राष्ट्रीय पहलों के संबंध में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन रणनीतिक अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण एवं पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख जुराखोम बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: امروز جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
0: آج تاجکستان کو انتراشی ستار پر آج کے مہان نیتا مامہیم امالی رامون کے 16 ویشویکس پہلوں کے مادیم سے پہچانا اور سے رہا جاتا ہے۔ آج مانوتا کے سامنے سب سے گمبھیر سمسیاؤں میں سے ایک جلوایو پریورتن کی تیور گتی ہے۔ دور بھاگیواش ہمارا گراہ ورتمان سمے میں گمبھیر پریاورنی سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے، اس لیے ستت آرتھک وکاس سنشچت کرنا تتھا پریاورن سنرکشن کرنا پورے وشو کے لیے 21ویں صدی کے سب سے مہتوپورن دائتووں میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ کہنا آوشک ہے کہ جل اور جلوایو کے کھیتر میں راشٹر نایک پہلوں کا مکھیہ ادیشیا یہ ہے کہ آج وشو سمودائے ان لابھکاری اپیوگوں کو اپنی رنانیتیوں، سرکاری کاریکرموں، وکاس آدھار ناہوں تتھا آنیا قانونی دستاویزوں میں لاگو کرے، کیونکہ آج ہم جلوایو پریورتن میں بہیاوا پریناموں को देख रहे हैं, जिन्होंने विश्व के अनेक देशों के अर्थव्यवस्थाओं को भारी आर्थिक और वित्तीय क्षति पहुंचाई है। ये क्षति अपने साथ व्यापक मानवीय नुकसान भी लेकर आती है। तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमाली रहमान का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं और उनके विनाशकारी परिणामों का समाधान विश्व देशों की एकता, प्रभावी सहयोग के विस्तार तथा मानवतावादी पहलों के माध्यम से संभव है, जो पृथ्वी के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करती है। विशेषज्ञों के अनुसार आज विश्व के 80 से अधिक देश जल संसाधनों की कमी का अनुभव कर रहे हैं, जबकि सूखा और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पृथ्वी पर 2 अरब 10 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है।

0: आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। विश्व के लाखों लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित है और अनेक देश जल संकट से पीड़ित है। कुछ क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं अधिक देखने को मिल रही है। ये सभी समस्याएं विश्व समुदाय को जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन इसे वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व यह कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेते हैं तथा जल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सम्मेलन देशों को अपने अनुभव साझा करने और जल के प्रभावी उपयोग के नए तरीकों को खोजने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों के पास जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों का अच्छा अनुभव है जबकि अन्य देश उन अनुभवों से लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के माध्यम से नए संयुक्त परियोजनाएं तैयार की जाती है और उनके कार्यान्वयन के लिए निवेश आकर्षित किया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे देश में आने वाले दिनों में दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन आयोजित होना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के पिघलने की वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्मेलन के महत्व के बारे में जुरा खान बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین
0: فرش که مهمهیم نیتا دوارا جال کوتنیتی کو آگه برهانی سے پرباوی انتراشری سامبندون میں ایک نئی پہل کا ادائی ہوا ہے۔ اس لیے جال سانسدانوں کا ویویکا پورن اپیوگ اور گلیشیاروں کے پگھلنے کا مدعا آج کی تاجکستان سرکار کی نیتی کے سب سے مہتوپورن دشاؤں میں سے एक माना गया है। 25-28 मई को दुशांबे में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सम्मेलन इससे पहले आयोजित सम्मेलनों की तरकीब निरंतरता है। पहला सम्मेलन 25-28 मई 2019, दूसरा 6-9 जून 2022 और तीसरा 10-13 जून 2024 को दुशांबे में आयोजित किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तजिकिस्तान विशाल जल विद्युत संसाधनों से समृद्ध देश है। इसलिए देश का भविष्य हर तश्ती से इस ऊर्जा स्रोत के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। रश के महामहिम नेता का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तेजी से बढ़ते खतरों को मानवता के हित में कम करना है। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मध्य एशिया के लगभग 60% जल संसाधन तजिकिस्तान के क्षेत्र में बनते हैं और देश के अर्थव्यवस्था के आगे के विकास के लिए जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण आज तजिकिस्तान सरकार का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, देश का तीव्र औद्योगिकरण करना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना और साथ ही लोगों के जीवन स्तर तथा जीवन गुणवत्ता को अन्य देशों की तुलना में बेहतर बनाना है।

समेला में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी विशेष रूप से उठाया जाता है। आज दुनिया के कई देशों में जल की कमी कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। जल की कमी के कारण उत्पादन घटता है और आर्थिक समस्याएं बढ़ती है। चूंकि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए खाद्य सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। कृषि के विकास के लिए जल का सही और प्रभावी उपयोग आवश्यक है। सम्मेलन में आधुनिक सिंचाई तकनीकों, जल संरक्षण और कृषि उत्पादों की दक्षता बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाता है। दुशांबे जल प्रक्रिया सम्मेलन पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भी बहुत से लोग ये नहीं समझते है कि जल संसाधन सीमित है और उनकी रक्षा करना आवश्यक है। सम्मेलन और उससे संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल के महा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। इससे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने में सहायता मिलती है।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज़।